तेरा कल्पी नीचोपनी नांजी कई खोजू की दीलाई देख गई कोई पानी जू तारा नहीं मेरा कल्पी नीचोपनी दियो मुनि आधारो छ खरी कसको भूल।

0: आ गया बावलट।
1: कौन?
0: पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

सूचना संगीत मनोरंजन को अटूट साहिनी यो हो रेडियो साहिनी 99.8 मेगाहर्ट्ज।